0: Masterchef में मास्टर करते वक्त
1: जो शैकिन चलाया,
2: जी
1: एक वो शैकिन के जो बड़े होते हैं वो कैद हो जाते हैं, बाद जाने नहीं।
2: ये मैं कहता हूँ कि इसमें जो है याद रखें कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, तोक लगा दिए जाते हैं, तो याद रखें कुछ लोग ये भी कहते हैं, दूसरा सवाल, यानी जो रमजान में मर जाए तो जन्नत में जाएगा, क्यों? क्योंकि जन्नत के दरवाजे बंद हैं, ऐसे है कि नहीं? हदीस में आया है ना कि रमजान में जन्नत दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है, यानी जो रमजान में मर जाए, अगर काफिर भी मरे तो क्या वो जन्नत में जाएगा क्या? क्यों? जन्म दरवाजे बंद जो है, तो याद रखें हदीस को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ बाहरी अल्फाज दे के उस पर अमल करना जरूरी नहीं होता, याद रखें, तो समझना बहुत जरूरी है। शैतानों को कैद कर दिया जाता है, इसमें उलमात मुख्तलिफ अकवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि असल में ये किनायत है कि शैतान कमजोर तरीन हो जाते हैं, मौजूद तो है शैतान, हथकड़ी, ये हथकड़ी नहीं लग जाती शैतान, जैसे हम देखते हैं हथकड़ी लग गई, जैसे कैदियों को कैद कर दिया जाता है, बल्कि शैतान कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ईमान का महीना है और लोग जो पूरे साल में अपने रब को भूल जाते हैं वो इतने करीब अल्लाह ताला के हो जाते हैं कि वो अपने गुनाहों से दूर हो जाते हैं, तो शैतान बेचारे क्या करते हैं, हथकड़े तो लगे बेचारों को, अब कहां किसके पीछे भागेंगे, सब तो रोजेदार हो, सब अल्लाह ताला के फरमानबरदारी में है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो शैतान तो बन गए कि नहीं बन गए? कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का कौल ये है, कुछ उलमा का, कि जो बड़े शयातीन हैं वो कैद हो जाते हैं और सही कैद हो जाते हैं, जो छोटे शयातीन हैं वो मौजूद रहते हैं, और कुछ उलमा का ये कौल है कि शैतान हकीकतन बंद हो जाते हैं और जो इंसान को वसवसे होते हैं वो शयातीन उल इंस हैं, उसके अंदर अपना कोई बिगाड़ है, उसके नफ्स के अंदर कोई बिगाड़ है, तो ये मुख्तलिफ अकवाल है उलमा के।
3: जो सवाल मेरा पहला था वो तहारत से रिलेटेड है, मैंने कहा मैं भूल गया उसको, क्योंकि हम जो बाल वगैरह साफ करते हैं बगल के लिए, इसका क्या ये नहीं है कि कहता है कि 40 दिन हो इस तरह नहीं हो सही, जो
2: 40 दिन से ज्यादा रहना जायज नहीं है, सहाबा कराम से साबित है कि वो 40 दिन के अंदर अंदर भी हो इस तरीके से काट देते और साफ हो जाते, 40 दिन से पहले अगर 30 दिन है तो क्या रहने दें, बेहतर है इंसान सफाई करता रहे हमेशा, लेकिन ये हद 40 दिन की कि इससे ज्यादा ना गुजरो, और वैसे भी ये दीन ईमान जो इस्लाम जो है ये तहारत का दीन है, पाकिजगी का दीन है, तहारत ईमान का हिस्सा है, पाकिजगी ईमान का हिस्सा है, तो इन बालों से बदबू होती रहती है, वो इंसान कभी बैठता है अपने घर में या बच्चों के साथ या अपने ऑफिस में तो बू की हालत में, बदबू की हालत में रहता है, तो इस्लाम मुसलमान से यह चाहता है कि वो हमेशा पाकिजगी में रहे और हमेशा अच्छी हालत में रहे। जितनी भी ये गलीज बाल मौजूद हैं सारे उतारने हैं, कुछ लोग नाक के ऊपर से शुरू करते हैं, तनक्तो है, नाक से ऊपर से शुरू नहीं करना, जहां पे ये बाल शुरू होते हैं वहां से आप वो काट दें। लिमिटेशन ये है कि जहां पे कोई खास लिमिट नहीं है, जहां पर ये बाल मौजूद है उनको उतार दो, ये बाल खास बाल हैं आनत पे जो मसाने के ऊपर और शर्मगा के इर्द गिर्द होते हैं सारे उतार दें। कुछ लोग रानों की तरफ आते हैं, रानों के बाल भी उतार देते हैं, रानों के बाल इसमें शामिल नहीं है, जो इर्द गिर्द की में ये बाल, हाँ अगर बड़े हैं कुछ लोग ज्यादा बड़े होते हैं वो काट दे कोई हर्ज नहीं है, यानी ज्यादा काटने में हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हद से ज्यादा गुजर जाते हैं कि मतलब पेट के ऊपर वाले हिस्से से और ये साइडों से भी निकाल देते हैं, ये दुरुस्त नहीं।
4: कुरान मजीद तो 23 साल में नाज़िल हुआ, फिर ये आयत का क्या माना?
2: शहर रमज़ान लज़ी उंज़िल फ़ीहि अल-क़ुरआन, कुरान मजीद तो 23 साल में नाजिल हुआ, तो ये आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, उलमा किस्म ये कौल मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि कुरान एक जुमला एक वक्त में आसमान पे उतरा, सातवें आसमान, फिर वहां से जिमी अलैहिस्सलाम का हुक्म दिया वहां से, फिर वक्तन वक्तन 23 साल में कुरान मजीद को उतारते रहे, इस तरीके से रमजान में ही। आप कहां से गिनेंगे मुझे नहीं पता, आप इधर से गिने मैं उधर से गिनू। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।
5: और दुआ का महीना इसलिए है कि अल्लाह ताला ने जब रमजान मुबारक का जिक्र किया और रोजों का जिक्र किया तो इन आयात करीमा में या इन आयात करीमा के बीच में दुआ का ज़िक्र भी किया है। दुआ का कोई ख़ास वक्त